0: मज़ाहमत के एक जायज़ ज़रिए के तौर पर पेश करने से बाज आने की अपील की है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में मुनक़िदा तकरीब के दौरान अमन का पैगाम पढ़ते हुए मेयर काज़ुमी मात्सुई ने कहा कि जौहरी हथियारों के गैर इंसानी तबाहकारी को गैर अहम समझना और अपने मफाद की खातिर ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल से परहेज़ ना करना बिलआख़िर इंतकाम के एक बेरहम सिलसिले को जन्म दे सकता है, जिसका नतीजा है हिरोशिमा या नागासाकी से मुशाबहा एक और सानहे की सूरत में निकल सकता है। मासूम ने जोर दिया है कि मुतादद सियासी रहनुमा अब भी जौहरी मज़ाहमत को एक हकीकत पसंदाना हिकमत अमली समझते हैं और इसके ज़रिए तशद्दुद को जायज़ करार देते हैं। यही वजह है कि जौहरी हथियारों से पाक दुनिया का ख्वाब हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बईद अज़ कयास होता जा रहा है। उन्होंने सब पर जोर दिया कि माजी से सबक सीखें और अमली इकदाम करें। तकरीब में अमरीका और ईरान समेत तकरीबन 120 ममालिक व खित्तों के नुमाइंदों के साथ साथ लगभग 50,000 अफराद ने शिरकत की। तकरीब में सुबह 8:15 पर ऐन उस वक्त जब अमरीकी B-29 बम्बार तैयारे ने 6 अगस्त 1945 को शहर पर एटम बम गिराया था, अमन की घंटी बजाई गई और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
1: जापान के वजीर अजम सानाए ताकाइची ने जापान के 3 गैर जौहरी असूलों की वाज तौर पर दोबारा तौसीक करने से गुरेज किया है। जुमेरात को हिरोशिमा पर अमरीकी एटम बम हमले की 81वीं बरसी की सालाना यादगारी तकरीब में शिरकत के बाद जारी करदा बयान में ताकाइची ने कहा है कि इनकी हुकूमत जापान की तवील अरसे से जारी गैर जौहरी पॉलिसी की पाबंद है और जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के क्याम के लिए हकीकत पसंदाना और अमली कोशिशें जारी रखेगी। ताहम खत्ते में सलामती की बदलती हुई सूरत हाल के बायस इस पॉलिसी पर बहस में शिद्दत आने के बावजूद उन्होंने इस बात का वाज़े अहद नहीं किया कि वो जापान के 3 गैर जौहरी असूलों यानी जौहरी हथियार ना बनाने, ना अपने पास रखने और ना ही इन्हें जापानी सरजमीन में दाखिले की इजाजत देने पर बददस्तूर कायम रहेंगी।
0: रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुध के रोज रूस के वस्ती इलाके यकतेरिनबर्ग के करीब एक गाड़ी में होने वाले धमाके में रूसी ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सरबरा शदीद जख्मी हो गए हैं। तास न्यूज एजेंसी ने हंगामी खिदमात के हवाले से बताया है कि उराल ड्रोन जोत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व्लादिमीर तिकाचिक को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल हैं। एक हंगामी अहलकार ने ताज को बताया कि उनकी हालत तशवीशनाक है और वो ICU में हैं। डॉक्टर उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और रूसी हुकाम ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया और ना ही इसका जिम्मेदार यूक्रेन को ठहराया है। यूराल ड्रोन जाऊद तैयार करती है, जिसमें रूसी अफवाज की तरफ से इस्तेमाल होने वाला ओपेर नामी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन भी शामिल है। जंग के आगाज़ के बाद से कई आला रूसी फौजी हुकाम और रूस की दिफाई सनत से वाबस्ता अफराद धमाकों और दीगर हमलों का निशाना बन चुके हैं, जिनका इल्ज़ाम मास्को अक्सर यूक्रेन पर लगाता रहा है।
1: मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह तुर्की के तराबज़ोन स्पोर्ट क्लब में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मोहम्मद सलाह मुंतकिली के मौजू पर बातचीत के लिए तुर्की पहुंचे और बातचीत के दौरान उन्होंने तराबज़ोन स्पोर के मद्दाहों से कहा है कि हम बहुत जल्द मिलते हैं। तुर्क क्लब तराबज़ोन स्पोर ने भी सलाह की मुंतकिली मुज़ाकरात के दवाम की तस्दीक की है। तराबज़ोन स्पोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर हवाई जहाज में सवार 61 नंबर की किट में मलबूस 34 साल स्ट्राइकर की वीडियो शेयर की है। वीडियो में सलाह ने कहा है कि तराबज़ोन क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं, हमारे लिए हर जगह तराबज़ोन है। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई।

हो सकती है। प्रेस्ली जिन्स ने यॉर्कशायर शहर के चर्च में एक पादरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी और अपने अकायद की वजह से अल्कोहल वाले मशरूबात से वो दूर रहते थे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक खुशगवार जायकेदार और जरासीम से पाक मशरूब बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। बीमार होने पर प्रेस्ली ने पहले नल के पानी को उबालकर जरासीम से पाक किया, बोतल में भरे हुए पानी में कुछ मादनियात शामिल किए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंजेक्शन लगाया। नतीजा एक चमकता हुआ मशरूब था जिसे आज हम सोडा या मस्नूई मिनरल वाटर कहते हैं। प्रेस्ली की यह दरियाफ्त ने सबसे पहले इसी शहर के मजहबी लोगों में बहुत तवज्जो मबजूल करवाई जहां वो रहता था और वक्त के साथ साथ ये पूरे मुल्क में फैल गई। एक शौकिया जर्मन कीमियादान जैकब श्वेब था जिसने मस्नूई मिनरल वाटर बनाया जो ज़्यादा खाने के बाद हमारा पहला जरिया था। यह दरियाफ्त यूरोप में फैल गई। श्वेब का बुनियादी मकसद एक ऐसी माया दवा तलाश करना था जिसे मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। श्वेब ने सबसे पहले प्रेस्ली के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मस्नूई मिनरल वाटर बनाया और फिर चीनी और क्विनिन मिलाकर टॉनिक हासिल करने में कामयाब हो गए। जर्मन कीमियादान श्वेब की कुनियत से कायम होने वाली कंपनी कई सालों से मस्नूई मिनरल वाटर और टॉनिक दोनों की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।